0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन के साथ हो आप ऑन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बिकॉज यार थर्सडे है ना, थर्सडे में हर चीज आपको अच्छी लगती है, पूरी दुनिया अच्छी लगती है, लोग अच्छे लगने लगते हैं, दिन अच्छा लगता है। क्योंकि यार मतलब आपका वीकेंड एक पॉजिटिव नोट पर ही शुरू करना चाहोगे ना, कि हंसी खुशी से वीकेंड गुजारे और आराम भी फरमाए। बस यही सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी मैं आज हमारे शो में लेकर आने वाली हूँ। और इनफैक्ट आज मेरे शो में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप इनफैक्ट एक और शख्सियत एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में। अब जहां मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही हूं, तो हु कैन बी अ बेटर पॉजिटिव पर्सन देन योर मदर। और जहां मम्मीज की बात हो रही है, तो बस समझदार को इशारा काफी है। इसके लिए आपको तो मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। कहां, यहां भाई 89.6 मिर्ची 1 पर आप फ्रीन के साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Gabala. Murga, murga. La virtua la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है, है?
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी, पर्स काटी ऊपर से, तो फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: तुम्हें एड्रेस दे दे अपना, वो कर दे, मैं कॉल कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: देखिए, हम उस मोड पर फिर से हमें दिल लेकर आया है या फिर ये मौसम लेकर आ गया है जहाँ पर हम हर साल आकर खड़े हो जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए आज का मौसम क्या कहता है, थोड़ा सा सतर्क रहिए बस।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। सतर्क इसलिए रहने कह रही हूँ क्योंकि हवाएं बहुत तेजी से चलने वाली है, और अगर शाम के वक्त कुछ प्लान्स कर रहे हो आप बाहर के, तो सोच समझ के कर लो अब, क्योंकि बारबेक्यू में ये जो हवाएं चलेगी, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो बारबेक्यू में एक अलग क्रिस्पी जो क्रंच आएगा सैंड का, वो अच्छा लगेगा? नहीं, राइट। सो वेल, आज का वेदर ये भी कहता है दैट मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मिनिमम 32 पर रहेगा। ऑल इन ऑल उसी तरह से रहेगा जो वेदर इन डिग्रीज जो हमेशा रहता आया है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन हाँ, हवाएं तेजी से चलने वाली है, तो बस यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखिएगा, स्पेशली वो लोग जो एलर्जीज डस्ट के बहुत बड़े शिकार होते हैं। सो यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और पानी पीते रहिएगा और सुनते रहिएगा मिर्ची। बाकी था तो फर्स्ट क्लास तो है ही भाई, मिर्ची है तो क्या टेंशन है, राइट। माइक से दिल तक आप स्क्रीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन,
5: इट्स हॉट।

0: देखिए, वो कहते हैं ना कि माइलस्टोन्स हमेशा बहुत स्पेशल होते हैं, और ऐसे ही स्पेशल हमारा मिर्ची मोमी का सीजन रहा इस बार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज बहुत ही खास है क्योंकि मैं आज अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर है, एंड शी इज उर्मी मला भराली बोरा, राइट? मुझे तालियां बजाना चाहिए खुद के लिए पहले तो, कि मैंने ये अच्छे से याद करके आपका नाम बताया है यहाँ पर। फर्स्टली वेलकम टू द स्टूडियो उर्मी, एंड दीज ऑल चीयर्स आर फॉर यू,
1: यू
0: ट्रूली डिजर्व इट। और जैसे मैंने कहा कि भाई माइलस्टोन है, स्पेशल होगा, एंड दैट्स व्हाट उर्मी पूरी तरह से उस पर सही उतरी है, बिल्कुल भी टोटली डिजर्विंग। और एक तरह से तो ये था कि जजेस के लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, इतने जबरदस्त थे। तो पहले तो बात तुम्हारे बारे में करेंगे उर्मी, हाउ डू यू फील? वो जो क्राउन पहना है वो बिल्कुल वैसे उस वाला एक्सप्रेशन था।
1: मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और मैं बहुत ज्यादा खुश, इसलिए क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था इतना टफ कॉम्पिटिशन है, कोई भी जीत सकता था। और ऐसा होता है जब तक आपका नाम आता नहीं है तब तक आपको लगता है कि शायद नाम आए, शायद नहीं आए। जब आखिरी में बोल रहे थे ना, आई वॉज क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड आई वॉज सेइंग टू माई हार्ट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लाइक ठीक है जो होगा। बट जैसे ही नाम आया आई वॉज लाइक शाउटिंग टू द टॉप एंड मैं स्टिल उसी ही जोन में हूँ सच बताओ तो।
0: और ये जोन है जो है आपका और काफी लंबे समय तक चलने वाला है। और एक मजे की बात ये होती है कि जब कंपटीशन ज्यादा टफ होता है उसमें आप विनर बनते हो तो उसका मजा और भी ज्यादा होता है, राइट?
1: उसमें आपको और ज्यादा ऐसा फील होता है कि नहीं यार, मतलब सच में सब डिजर्विंग थे बट आप जीते हो, मतलब सही आपने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि लोग को यार पर छाप छूट गया।
0: बिल्कुल छाप छोड़ा है आपने, आपने भी, आपकी आवाज ने भी। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए आपको हमारे साथ में बने रहना पड़ेगा, यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ और यहां पर मिर्ची मॉमी उर्मी मला के साथ में। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: देखिए, हर किसी की सक्सेस की कहानी एक इंस्पिरेशन से शुरू होती है। और आज हम सक्सेस की कहानी बात कर रहे हैं ऑफ आर मिर्ची मॉमी सीजन 5 विनर, दैट इज उर्मी मला। अब मैं पूरा नाम नहीं लूंगी यहाँ पर,
1: उर्मी ठीक है,
0: बट लेट मी टेल यू, शी इज उर्मी मला
1: भराली बोरा।
0: यस, सो उर्मी मिर्ची मॉमी सीजन 5 तक आ गया था, एंड आई एम श्योर आपने प्रीवियस सीजन्स भी देखे होंगे। विच वॉज दैट मोमेंट जहाँ पर आपको लगा कि नहीं, मुझे इस सीजन में पार्टिसिपेट करना है?
1: तो मैं आपको शुरुआत से शुरू करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने नॉर्थ इंडियन लेडीज कतर का जो क्वीन हंट कंपटीशन था सीजन 1, उसकी मैं विनर रही।
0: अरे वाह।
1: और वहाँ जो जूरी मेंबर थी, एक थी वो रौनक थी जो लास्ट ईयर की मिर्ची मॉमी की विनर है।
0: हाँ, नाइस।
1: तो द मोमेंट शी सॉ मी, शी कांग्रेचुलेट मी, शी सेड तुम इस साल कहाँ थी मिर्ची मॉमी में? आई वाज लाइक, मिर्ची मॉमी कुछ मतलब, तब उन्होंने मुझे इलैबोरेट किया, बताया और कहा कि तुम अगले साल पक्का जाना। एंड इस बार भी जब मैंने उनको ऑडियंस में देखा, मैंने कहा देखो आपने कहा मैं आ गई,
0: और देखो और मैं जीत भी गई, सिर्फ आई नहीं, आई केम, आई कॉन्कर्ड, वो खेलते हैं ना कि जेन जी लैंग्वेज में, एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स,
1: नो ब्रेड क्रम्स लेफ्ट,
0: यस। सो दैट इज उर्मी, आवर विनर ऑफ मिर्ची मॉमी सीजन 5। और उर्मी, पूरे आपके ये जर्नी का एक मेमोरेबल मोमेंट, नॉट द क्राउन ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट,
1: मैं सही में कहूँ तो ये पूरी जर्नी ही मेमोरेबल है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बोलते हैं ना कि सैक्रिफाइस चीज़ें करनी पड़ती है। मेरी बेटी के भी कॉम्पिटिशन थे, मुझे पता है, मैं जब फर्स्ट ऑडिशन के लिए आई थी, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आप फर्स्ट नंबर पे ही प्लीज़ आप आने देना बोलने के लिए, क्योंकि उसके जस्ट बाद मेरी बेटी के सिंगिंग ऑडिशन थे।
0: ओके।
1: तो वहाँ से लेकर और फिर कैसे मैंने चीज़ें प्रिपेयर करी है, एक दिन पहले प्रॉप बनाना और सोचना कि कॉम्पिटिशन लेवल इतना हाई है, क्योंकि मैं सबसे मिली थी प्रैक्टिस के दिन, सो आई हैव सीन देम, दे आर वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड, और मुझे पता था कुछ एक्स फैक्टर ही करना पड़ेगा तभी कुछ कमाल हो सकता है, और मैंने बस वही किया है। और अगर मेमोरेबल पार्ट बताऊं तो आई थिंक वो जो स्माइल थी ना सबकी मम्मी के फेस में थ्रू आउट दैट कॉम्पिटिशन, दैट वाज सो गुड एंड पॉजिटिव। मतलब
0: nice.
1: कहते हैं ना कि दिल, मतलब उस वक्त उसी टाइम पे खुश रहता है कि हर मम्मियाँ अपने दिल का कुछ कर रही हैं, शी इज डूइंग समथिंग फॉर देयर सेल्फ, और ऑल थैंक्स टू मिर्ची मिर्ची वन, आई मीन लाइक आप लोगों ने हमें प्लेटफॉर्म दिया एंड वी आर
0: एनी टाइम विद दिस, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एंड आई एम श्योर देयर आर मोर मॉमीज लिसनिंग टू अस राइट नाउ जो अभी आपसे इंस्पायर होके अगली बार पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन और भी बात होगी भाई, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पर हमने क्या किया और उर्मी ने क्या किया ये हम बताएंगे राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। एंड मेरे साथ है मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर उर्मी मला, बने रहेगा और मिर्ची के साथ।
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्ट लिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊंचाई है जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊंचाइए ऊंचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Kaise

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कि इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन मिर्ची मॉमी सीजन 5 के दिन हमने वहाँ पर विटनेस भी किया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर उर्मी इज देयर। हे उर्मी, बातें चल रही है हमारी और उर्मी इतनी खुश सी है, वैसी उनकी स्माइल अच्छी है, लेकिन एक अलग ही रौनक आ गई है आपके चेहरे पर, है ना, ये टाइटल जीतने के बाद। वेल, मैं यहाँ पर डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रही थी, एंड आई वाज वेरी अमेज्ड टू सी के जब इंट्रोडक्शन राउंड में कोई राजस्थानी आउटफिट पहन के आया है, एंड यू वर representing
1: Assam ka.
0: Yes, so I exactly I want to know more about it, because out of all the 16 contestants, Urmi had the most

0: हमारा अटायर है आसाम का वो है टू पीस होता है, सादोर होता है जो हम चुन्नी की तरह ड्रेप करते हैं जो साड़ी जैसा दिखता है, और नीचे हम मेखला पहनते हैं जो फोल्ड करके हम उसको साड़ी के प्लेट्स की तरफ पे फोल्ड करके डालते हैं। सो ये जो टू पीसेस है वो अलग अलग फैब्रिक्स के भी बनते हैं। आप सिल्क का मेजरली हमारा फेमस है, मुगा फेमस है जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में आसाम में ही मिलता है। मुगा के जो वर्म्स होते हैं उनके थ्रेड से बनाया जाता है। तो जो मेरी बेटी थी उसने मुगा पहना था।
1: हाँ, दैट इज़ सो क्यूट कि माँ बेटी दोनों साड़ीज ही है, राइट? साड़ीज में थी, बिल्कुल अच्छी लग रही थी। और वो ऐसा बड़ा सा जो था,
0: वो मैंने प्रॉप बनाया था। एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहती थी कि कैसे मेरे बच्चों के थ्रू मदरहुड मुझे रिवील्ड हुआ है पेटल पेटल, एंड द होल मदर बिकम्स अ फ्लावर टू मी, लाइक मैं वो दिखा रही थी। तो उसमें टोटल डिफरेंट फीचर्स थे, नर्चरिंग था, बीइंग अ टीचर था, प्रोटेक्टर था, इंस्पिरेशन था। तो ये सारी चीजें डाल के मैंने एक एक पेटल पे एक वैल्यू फिट किया था, और उसको मैंने ब्यूटीफुली ऑरेंज और येलो से कलर किया था क्योंकि वो मेरे आउटफिट के साथ कॉन्ट्रास्ट जाए और वो इफेक्ट वैसा दिखे।
1: सो आई मीन दैट वॉज सो लवली टू सी, और आप इतनी अच्छे से ग्रेसफुली वो लेकर चलकर आई। That was definitely the X factor of your round one. लेकिन round two भी कुछ कम नहीं था। Round two के बारे में तो हम बहुत बातें करेंगे यहाँ पर। In fact, Urmi is going to entertain you as well. थोड़ी ही देर में। So you gotta stay tuned with us. That is Mike Sidil Tak Afreen and Mirchi Mommy, season 5 winner Urmi. Yes, it's hot.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
1: Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
5: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो अक्सर मैं कहती हूँ कि कभी कभार कुछ गाने होते हैं उसके बाद में मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती हूँ. और ऐसे ही कभी कभार कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं जो देखकर हम इतने ज्यादा एस्टोनिश हो जाते हैं. और ऐसे ही कुछ किया था हमारा हाल मिर्ची मॉमी में. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्टरनून है आपके साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और बातें हो रही हैं विद उर्मी, मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर. हे उर्मी.
1: या आई एम हियर ओनली. इट्स नॉट.
0: देखिए उर्मी, आपने जो राउंड 2 में यानी टैलेंट राउंड में ऐसा परफॉर्म किया दैट वी जस्ट डिडंट वांट यू टू स्टॉप. कि हमें ऐसा था कि आपने पूरा समय बांध लिया था एंड यू जस्ट हैड 3 मिनट्स टाइम एंड इट्स क्वाइट अ चैलेंज कि 3 मिनट्स में सबका अटेंशन ग्रैब करना, इंप्रेस भी करना, अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस भी देना एंड यू जस्ट नेल्ड इट. लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने गाना गाया था एंड इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग, जस्ट अमेजिंग. एंड यू हैव टू सिंग. लोग थोड़ी बिलीव करेंगे. आप गाओगे तो बिलीव करेंगे, राइट?
1: बिल्कुल, क्यों नहीं. तो मैं कौन सा गाना गाऊं?
0: आपने कितने गाने गाए पहले तो वो बताइए.
1: मैंने 4 गाने लिए थे. लग जा गले, आज की रात होना है क्या, डॉन का जो सॉन्ग है, रात बाकी बात बाकी, और फेमस रंबा हो.
0: रंबा हो, यू एंडेड ऑन दैट. व्हाट अ बैंग यू एंडेड ऑन. सो आई वांट टू लिसन टू दैट ट्रैक, रात बाकी बात. आई लव दैट सॉन्ग.
1: ओके हियर इट गोज.

0: सोचो ना, देखो तो, देखो ना मुझको, हाँ प्यार से। थैंक यू।
1: क्या बात है यार,
0: उर्मी यू टू गुड। लेकिन वो कहते हैं ना, मेरा तब भी जी नहीं भरा और अब भी जी नहीं भरा। एंड एक और गाना हो जाए उर्मी।
2: एक और कौन सा?
0: क्योंकि तुम आसाम से हो,
2: हाँ,
0: तो जुबिन गर्ग का एक गाना क्यों ना।
2: ओके गुड गुड। जुबिन गर्ग का मैं हिंदी सॉन्ग गाऊंगी जो बहुत फेमस है, या अली।
1: ऑफ कोर्स, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। प्लीज गो अहेड।
2: ओके ओके।
0: मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फकीरम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल दो राहत के, चाहत के इश्क पे।

0: यार पे कुर्बान सभी.
1: Wow, I just couldn't wait and stop myself. मैं भी गाना चाहती थी, but I cannot match to your singing level. Too good on me. And इस पर जरूर हमें सुनने वाले सारे listeners को यकीन आ गया होगा कि भाई विनर बनी है, कुछ वजह से बनी है और इसी वजह से बनी है. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और साथ में है मिर्ची मम्मी सीजन 5 विनर और मी. You gotta stay tuned with us on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, golden summer के साथ पाइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो, जिसे ने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मेरे साथ है मिर्ची मॉमी सीजन 5 की विनर, दैट इज उर्मी मला। यस उर्मी, एज आई लाइक टू कॉल यू स्वीटली, उर्मी बहुत अच्छा नाम है, उर्मी मला भी अच्छा नाम है। लेकिन उर्मी, जैसे आप विनर बनी हो, आपकी शुरुआत कहीं से हुई है, और अक्सर कहते हैं ना कि लेडीज, अब लेडीज मॉमीज इतनी ज्यादा टाइड अप होती है ना अपने बच्चों में, फैमिली में, घर में, और निकलना ये थॉट ही, घर से निकलकर कुछ करना ये थॉट ही सबसे लास्ट आता है खुद के लिए, है ना?
2: बिल्कुल।
1: एंड उर्मी, जैसे तुम्हें किसी ने इंस्पायर किया था, एंड दैट वाज कोइंसिडेंटली मिर्ची मॉमी, वैसे ही तुम क्या मैसेज देना चाहोगी टू ऑल द मॉमीज आउट देयर हु माइट गेट इंस्पायर्ड एंड जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट सीजन?
2: ओके, सो मैं कहूंगी कि वही बात जो बोलते ना, कहीं जाने पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। सो आपको अपने लिए सेल्फ लव होना चाहिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप सबसे पहले बहुत अच्छे दोस्त बना लेते हो, आप कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर होके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने पे अपने आप पे एफर्ट्स डालते हो।
1: बिल्कुल।
2: और जैसे ही आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो, आपको अपने आप से और प्यार होता है कि मैं आप कैसे अच्छी दिखूं, मैं अपने लिए क्या करूं, मैं किस तरह से अपने आप को सबके सामने बोलने के लिए कहूं, लाइक व्हाट शेल आई बी स्पीकिंग ऑफ एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं, और इवेंचुअली वो कहाँ हेल्प करती है, आपके बच्चे आपसे देख के वही सीखते हैं।
1: Absolutely.
2: तो आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होते, वो देखते मेरी मम्मी इतना मेहनत कर रही है, ऐसा कर रहे, तो घर से ही मैं सीखूं ना, तो मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए एग्जांपल सेट कर दीजिए, बाकी तो बच्चे अपना सीख ही लेंगे, बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे।
1: बहुत ही सही बात कही है, यूं ही थोड़ी ना राउंड 3 में भी ये जीतकर क्वेश्चन आंसर के इसमें आगे आके जीती है। वेल, और उर्मी, बड़े बुजुर्ग हमारे घर के ये कहते हैं कि एक घर खुश रहने की रेसिपी ये है कि घर की औरत खुश रहना चाहिए।
2: जी बिल्कुल।
1: तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के मेल्स बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, तो बस आप भी ऐसे ही कुछ फॉलो कीजिए, एंड ऑल द मॉमीज आउट देयर गेट इंस्पायर्ड एंड यू शुड जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट सीजन ऑफ मिर्ची मॉमी, दैट्स गोना बी सीजन 6। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उर्मी।
2: थैंक यू सो मच आफरीन।
1: एंजॉय, सेलिब्रेट, एंड यस, कीप अप द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दैट लवली स्माइल।
2: और मैं आखिरी में सब स्पॉन्सर्स को भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपना वक्त देकर इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट हमारे लिए डिसाइड किए और दिए गए, एंड वो सैश, वो क्राउन, एवरीथिंग इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। और बाकी वो जो मोमेंट था, उस तरह से हमें इतना स्पेशल फील कराया ईच एंड एवरी मोमेंट, जो 16 फाइनलिस्ट थी, हम लोग आपस में यही बात किए हैं कैसे मिर्ची ने हमें इतना स्पेशल फील कराया। ऑल थैंक्स गोज टू आरजे आफरीन, आरजे अंशु, आरजे गौरव, जिन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया है, एंड साथ में साथ ऑब्वियसली हम अगर बात करें तो जो भी हमारे बैकएंड सपोर्ट में थी, अंकिता थी, जारा थी, उन लोगों ने भी काफी हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, कीप डूइंग दिस एनकरेजिंग वर्क फॉर अस, एम्पावर अस, थैंक यू सो मच।
1: सब मेरा तो दिन बन गया, हाई एकदम बन गया, ये मैडम जी आई है एकदम मुस्कुराते हुए स्टूडियो में और मेरा दिन बना दिया। फिलहाल के लिए आई एम श्योर शी स्प्रेड द पॉजिटिविटी टू यू एज वेल। मैं हूँ आफरीन, साथ में है उर्मी, यू गॉट अ स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय, सायोनारा।
2: इट्स हॉट, इट्स हॉट।

0: अंजलि बच ये हेल्पलाइन बोल।
1: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
0: काय तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

अच्छा मुझे बताइए, आपने कभी नोटिस किया है आजकल स्कैमर्स भी बड़े प्रोफेशनल हो गए भाई। पहले फेक कॉल्स आते थे, फिर ओटीपी स्कैम्स आ गए, फिर वीडियो कॉल के स्कैम्स आ गए, और अब तो वेबसाइट्स भी बिल्कुल असली जैसे लगने लगी है। मतलब इंसान करे तो करे क्या। मेरे ख्याल में तो ये साइबर क्रिमिनल्स ने भी ब्रांडिंग और यूजर एक्सपीरियंस का कोर्स ही कर लिया है लगता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन को सुन रहे हो आप। और सिंपल सी बात है बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की है। उन्होंने सिटीजन्स, रेसिडेंट्स और बिजनेस ओनर्स को वार्न किया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर वेरीफाई कीजिए। रीजंस ये है, ऑब्वियसली फ्रॉडस्टर्स ऐसे फेक वेबसाइट्स बना रहे हैं जो ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स की एग्जैक्ट कॉपी तो लगती है, सेम लोगो होता है, लेआउट भी वैसे की वैसे ही होता है, कलर्स वगैरह आपको लगेगा हाँ ये भाई वैसे ही है, लेकिन ये वो नहीं होती है। और फिर आप आपके QID डिटेल्स, पासवर्ड ये सब डालते हो तो फिर हो गया ना आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज, है ना। सो यहीं पर है कि आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डोंट ट्रस्ट द लिंक, ट्रस्ट द सोर्स। गूगल सर्च के रिजल्ट से या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से गवर्नमेंट पोर्टल ओपन करने के बजाय खुद ऑफिशियल वेबसाइट टाइप कीजिए या ऑफिशियल ऐप यूज कीजिए। डिजिटल दुनिया में अवेयरनेस ही नया एंटीवायरस है, राइट। थोड़ी सी विजिलेंस और आपका डेटा, पैसा और पीस ऑफ माइंड तीनों सेफ रह सकता है, क्या बात है। फिलहाल के लिए तो आपका पीस ऑफ माइंड आएगा ये अगले गाने से। तो माइक से दिल तक आप श्रीन के साथ बने रहिएगा अनमर्शी साथ।

0: Milci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La vie de la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। I love you, but मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, I love you, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
4: वाला,
2: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊं।
4: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
3: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: देखो इम्तियाज अली, आपका ये जो फॉर्मूला है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में अब आने लगा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और अभी जो गाना आपने सुना मीका सिंह की आवाज में, हीर तो बड़ी सैड है जी, तमाशा मूवी का ये गाना अपना इम्तियाज अली की मूवी में, ऐसे एक मस्ती वाला गाना तो होना ही चाहिए, स्पेशली ऑन द फीमेल प्रोटैगनिस्ट, है ना। और ऐसा ही ट्रेंड ना मैंने पहले से देखा है, अब भले वो ये गाना ही क्यों ना हो। बिल्कुल गीत का चुलबुली अंदाज ये गाने में, जब भी मेट के मूवी में ये गाने में बिल्कुल अच्छे से दिखाया गया है। एंड देन हाउ कैन वी फॉरगेट रॉकस्टार का ये गाना, हाय हाय। एंड देन ही हैज डन दिस मैजिक येट अगेन इन हिज मूवी मैं वापस आऊंगा। और मूवी यार मुझे देखने का मौका मिल गया कतर में, बस मैं तो खुश हो गई। एंड दिस मूवी में ये अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ निलंजना घोष की आवाज में, आई थिंक सो इज द विनर आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स यार, फिलहाल तो माय पर्सनल फेवरेट। और ये गाने में ना वो इनोसेंस भी है वेदांग रैना की आवाज में, वो नटखट अदाएं शर्वरी, मैं तो फैन हो गई मैं तुम्हारी। और कितने सारे लोगों ने इसके रील्स बना के रीमेक करने की कोशिश की है, बट नो वन कैन कम क्लोजर टू व्हाट एक्सप्रेशंस यू गेव। सो कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक मैं वापस आऊंगा का मस्कारा, राइट हियर ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC. विजिट मलबार गोल्ड.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

अब एथे जो आ गए हो ना, तो जरूरत की बातें सुनकर जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जब भी आती हूँ भाई, कुछ ना कुछ काम की बात तो जरूर लेके आती हूँ, स्पेशली इस वक्त पर। सो वेल, समझदार को इशारा काफी है। और ये रहा देखो, वीकेंड में है, अपने इम्पोर्टेंट काम के साथ में ये एक्सचेंज रेट का फायदा उठा के पैसे अगर भेजने तो कर लीजिए। और देखिए, आज का एक्सचेंज रेट आईपी का ये कहता है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 25.98, जो ही जनाब पाकिस्तानी रुपीज 76.74। अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.83 पर है। श्रीलंकन रुपीज 91.94 एंड नेपाली रुपीज 41.49। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का वन एंड ओनली फॉर्मूला 9.6 मिर्ची 1 पर। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर होते ही नजर आते हैं और कुछ लोग जाने के बाद भी याद रहते हैं, और वो फर्क बस थोड़ा छोटा सा है। फर्क बस उनकी खुशबू का है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं मेरी तरह जो परफ्यूम को सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन मानते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। यस, दोहा का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर परफ्यूम एग्जीबिशन दैट इज तीब अल हजम, इट इज कमिंग बैक। और ये 25 जून से स्टार्ट होने वाला है और 4 जुलाई तक रहने वाला है। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल अरबिक ऊद, बखूल, लग्जरी फ्रेग्रेंस और कई प्रीमियम परफ्यूम ब्रांड एक ही छत के नीचे। मतलब मैं पिछली बार गई थी एंड इट वाज नॉट इनफ, मतलब एक बार नहीं दो बार गई थी एंड लिटरली वहां पर मैंने देखा कि लोग ट्रॉली भर भर के परफ्यूम्स लेते हैं। कुछ तो बात होगी उसमें, इसीलिए राइट। सो इफ यू आर रियली अ परफ्यूम लवर, यू शुड नॉट मिस तीब अल हजम इन अल हजम मॉल। वेल, ओपनिंग डे पर जो है वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, रात के 11 बजे तक रहेगा। उसके अलावा वीकडेज में 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, फ्राइडेज को 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। मैं हूं आफरीन आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देखते क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुम तो ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: हमसे जोश
1: हाय सर,
0: हमसे जोश
1: हाय सर।
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट। जन्म

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो, साल का वो टाइम चल रहा है कतर में जब कतर धीरे धीरे से खाली होते जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर में समर के वेकेशन शुरू होने वाले हैं। अब बस मेरे ख्याल में ये आखिरी महीना है फॉर ऑल द किड्स आउट देयर। और उसके बाद क्या है, आहिस्ते आहिस्ते सारे लोग वेकेशन बनाने जाएंगे। कोई इंडिया, कोई पाकिस्तान। जब होम टाउन जाते हैं ना, तब थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं इस वक्त पर, क्योंकि क्या है कि छुट्टियाँ लंबी मिलती हैं। एंड एट दिस टाइम जब आपके ट्रैवल में आपको और थोड़ी सी सहूलियत मिले तो कितनी अच्छी बात होगी ना। यस, तो जैसे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जब जाने वाले हो, तब वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रोलर सर्विस फॉर चिल्ड्रन ये शुरू हो चुकी है। देखिए, 300 तकरीबन स्ट्रोलर्स अवेलेबल है। और इसके लिए पता है मजे की बात कि कोई भी प्री बुकिंग और रजिस्ट्रेशन कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बस सीधा पैसेंजर्स कैन पिक अप द स्ट्रोलर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रोलर नेस्ट लोकेटेड अक्रॉस द टर्मिनल। अब ये जो नेस्ट लोकेशन है स्ट्रोलर के, ये कॉन्कोर्स ए बी सी डी ई हर जगह आपको ये नजर आएगी। ये कितनी ज्यादा बून है ये तब पता चलता है जब आप कहीं ट्रैवल करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स विद इन द एयरपोर्ट भी काफी वॉकिंग रहती है। और एयरपोर्ट के जो टाइम्स होते हैं फ्लाइट्स के, कभी कभार थोड़े से ऑब्जर्व हो जाते हैं कि एकदम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, जिसकी वजह से बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं अपनी नींद की वजह से। सो ये स्ट्रोलर ऐसे वक्त में बहुत ही काम का आएगा। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखिए, मैं मानती हूँ कि जिंदगी में रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच खुद की इम्पोर्टेंस भूल ना जाना ये भी तो जरूरी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। और इसी खूबसूरत ख्याल पर बशीर बदर साहब का ये शेर आपके लिए।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर में मिल जाए तो दरिया दरिया नहीं रहता। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही है इन्होंने। रिश्ते जरूर रखिए, लेकिन इतने में मत भूल जाइए कि आप अपनी पहचान ही मिटा दें। हर दरिया की अपनी रवानी होती है और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ राइटर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. ज़बान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: अमुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: ना ना ना ना, आप कितना भी कहो अब तो मैं रुकने ही नहीं वाली हूँ। देखो बाकी दिन एक तरफ और थर्सडे की खुशी अलग होती है भाई, क्या है ना अंशु?
2: एब्सोल्युटली यार, वीकेंड आ गया, मतलब वीकेंड यानी कि वो दिन आ गया जब इत्मीनान से बिना सुबह उठने की किसी टेंशन के सोना है।
1: आस्क मी। सो वेल, हैविंग सेड दैट, वीकेंड में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे थर्सडे वाले दिन को होती है।
2: फ्राइडे कहीं ना कहीं आने के बाद ये फील होने लगता है यार कि सिर्फ सैटरडे बजा है, वापस रूटीन में जाना है, सेटल डाउन होना है, फिर वर्किंग डे।
1: और मुझे लगता है सैटरडे अमूमन यहाँ पर लोग ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, अपने सारे काम करते हैं, वही काम करते हैं। इज इट द सेम फॉर यू?
2: 100%
1: पूरा हफ्ते
2: भर का स्टॉक अप करना ये
1: है ना, है ना। सो वेल विद दिस थर्सडे, एज मैंने कहा कि भाई हमारे तो प्लान्स हैं, आपके क्या प्लान्स हैं शेयर कीजिएगा। 5000196 इज आवर व्हाट्सएप नंबर। और मैं चली और आपको अंशु के हवाले करते हुए
2: बिल्कुल
1: सुनते रहेगा मिर्ची।
2: इट्स हॉट।

0: Mitchy helpline.
1: Hi there. What's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: ऑलराइट, इतना पावर पैक गाना, इतना खूबसूरत सा माहौल, जिंदगी में इंसान को चाहिए तो और क्या ही चाहिए।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई साहब, जिंदगी में जब वो दिन आ जाए ना जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, तो एक बात समझ जाइए कि हर जगह अगर आपको कोई आलम नजर आता है तो वो है खुशी का। एब्सोल्युटली हफ्ते का वो दिन जिसका होता है हम सभी को बेसब्री से इंतजार, यानी कि थर्सडे। वीकेंड आ चुका है यार, एंड सच कहूँ अगर कोई मुझसे पूछे ना कि वीकेंड में तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, दिल से एक बात कहूँगी, कुछ और तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे सोना है, भरपूर सोना है, बहुत ज़्यादा सोना है। पता है क्या मेरे साथ ना एक बात होती है, अगर मुझे पता हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, तो ऑर्गेनिकली मेरा दिमाग जो है ना इस बात के लिए सेट हो जाता है कि जल्दी उठना है। एक स्ट्रेन सा रहता है कहीं ना कहीं, तो इवन तो मैं अगर रात में 9 बजे भी सो रही हूँ ना, वो सुबह अलार्म बजेगा या नहीं बजेगा वाली फीलिंग मुझे बहुत सताती है। लेकिन जब मुझे पता हो कि सुबह उठने का ऐसा कोई टाइम लाइन नहीं है, ऑटोमेटिकली भले फिर मेरी आँख 4 बजे खुल क्यों ना जाए, लेकिन मैं बेफिक्र होकर सोती हूँ। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? और अगर नहीं होता तो आपने इसको चैनलाइज कैसे किया यार? Want to learn the technique of doing so. इंसान बिना स्ट्रेस के सुकून से सोए तो कैसे सोए? 5000189 6 पे विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। लेकिन अभी फिलहाल ये बता दूं, वक्त जो है काफी कमाल है आपका और हमारा जो साथ है। मिर्ची घड़ी में बज रहे 10:14।
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: तो चलिए जी, इसके साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अरिजीत सिंह, निकिता गांधी की आवाज, राबता का ये टाइटल ट्रैक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Navid bala burga. Mirchi burga.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी, पर्स काटी ऊपर से, और तू फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके?
1: 17 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: कर दे, मैं कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ऑलराइट, जुबिन नौटियाल जो है अपनी आवाज से हम सभी को लुटाना कैसे है ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस के तड़के के साथ एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड कुछ तो खास है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है जो इस वक्त आपके बीच मैं पेश करना चाहूंगी। भाई साहब इतना समझ जाइए, जैसे ही थर्सडे हमारी जिंदगी में आता है सबसे पहले हमारे जहन में हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या करें क्या न करें, ये कैसी मुश्किल है। तो चलिए यार आपकी इस मुश्किल का हल निकालते हुए आपके वीकेंड का कोई खास प्लान जो है हम बना ही दें। देखो भाई, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो एक बात तो तय है कि कोई फीवर में हो या ना हो, लेकिन हाँ फुटबॉल का फीवर जो है वो 101% है। माना यार कि कतर का परफॉर्मेंस अब तक की अगर हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो इस साल भैया कतर ने पहली बार अपने दम में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। ना ही सिर्फ ये, फीफा के पहले पॉइंट की बात करें तो वो भी अलनाबीज ने स्कोर किया। भैया सफर जो है इस वक्त ठहरा जरूर है, रुका जरूर है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले सीजन्स में हम जो है ना फुल फॉर्म में पूरे पावर के साथ लौटेंगे। अरे देखो ये तो सब शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑनगोइंग फुटबॉल मैचेस को आपको अभी भी जीना है, विटनेस करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप बिल्कुल लुसेल पहुंच सकते हैं। एंड लुसेल में जिस तरह का पूरा आलम सजा हुआ है, इतनी सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ मैचेस, बहुत सारा फनफिल एरिया, जाओ यार वीकेंड को ढेर सारी कम्युनिटीज के साथ, कल्चर्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करो। एंड स्पोर्टिंग वाइब तो वैसे भी जिंदगी में खुशी और रौनक ले ही आती है, क्या कहती पब्लिक ऐसा। अरे देखो ये तो सब शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑनगोइंग फुटबॉल मैचेस को आपको अभी भी जीना है, विटनेस करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप बिल्कुल लुसेल पहुंच सकते हैं। एंड लुसेल में जिस तरह का पूरा आलम सजा हुआ है, इतनी सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ मैचेस, बहुत सारा फनफिल एरिया, जाओ यार वीकेंड को ढेर सारी कम्युनिटीज के साथ, कल्चर्स के साथ मिलकर

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: प्यारे से एक्सपीरियंस को आप मिस ना करें, इसलिए इसकी सारी डिटेल्स एक बार फिर से मैं आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ, लेकिन कोई तो आम सी बात है जो जिंदगी में खास एक्सपीरियंस देती है, उसकी कहानी भी आपके सामने बयां कर दूं या उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचा दूं। इस वक्त मेरी बस यही कोशिश है। हाविंग सेड दैट, वीकेंड मोड को पूरी तरह से ऑन करते हुए, इवेंट्स की बाहर लाते हुए, कतर में कुछ तो खास है जहां पर आपको जरूर पहुंचना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हम्बा एग्जीबिशन, यानी कि द इंडियन मैंगो फेस्टिवल, विच इज बींग ऑर्गेनाइज एट सूक वाकिफ ईस्टर्न स्क्वायर, and it is completely conducted by Embassy of India Qatar. And what a phenomenal experience it is. Sach keh rahi hu, ab tak na gaye to bhaiya aaj jana jo hai na wo lazmi hai. Sirf aur sirf 27th of June tak ye exhibition hamari zindagi mein. और सबसे खास बात क्या है पता है, आम की वैरायटीज़ तो हैं, आम से बनी हुई डेलिकेसीज तो हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ आते हैं एंड यू नो आम के पूरे डेलिकेसीज को कंज्यूम करते हैं, भाई इनके एक्सप्रेशंस देखिए, कोई जब वो पानी पूरी खा रहा होता है उसका चेहरा देखने लायक होता है। नहीं मतलब हम किसी को ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहते, लेकिन देख कर कहीं ना कहीं लगता है कि भैया हमें भी ना एक दो पीस तो एक्स्ट्रा ट्राई कर ही लेना है। एंड अगर पानी पूरी की बात करें, चूंकि वहाँ पर भरमार में मौजूद है यार, जब तक पानी पूरी के बाद वो आखिरी पापड़ी ना मिले ना यार, ये पानी पूरी की अपनी जर्नी जो है ये कंप्लीट नहीं होती। एंड इस बार अगर मैं पानी पूरी की बात करूं, मीठा पानी भी है, खट्टा पानी भी है, तीखा पानी भी है, आम के पानी के 5 से 6 वैरायटी, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या ही चाहिए। जाइए जी द इंडियन मैंगो एग्जीबिशन को अटेंड करके आइए, पूरी तरह से इसका मजा उठाकर आइए, एंड उसके बाद जब भर भर के आम की पेटियां घर लाओगे उसका कुछ अच्छा बनाओगे, हम तक जरूर पहुंचाना। यार घर पे आम का अचार बनाते हो ना अगर, प्लीज एक डब्बा मेरे लिए रिजर्व, अभी से बुकिंग कर रही हूं। अरिजीत सिंह की आवाज़ और कासा का साथ, अगला पावर पैक गाना एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hey, Basanti, in कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

पावर पैक ट्रैक, चाहे ओरिजिनल वर्जन की बात करें या रिप्राइज्ड वर्जन की बात करें, भाई दोनों ये वर्जन्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारी जिंदगी में मैजिक का तड़का जो है ना वो कैसे लाया जाए। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वैसे अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें सो इंडीड इट इज वेरी वेरी स्पेशल। अब रीजन ये है क्योंकि अगर बच्चों की बात करें, उनकी स्कूल की छुट्टियों की बात करें, तो भैया आज मैक्सिमम इंडियन स्कूल्स, पाकिस्तानी स्कूल्स का है आखिरी वर्किंग डे बिफोर द समर वेकेशन किक स्टार्ट्स। सो आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन के कगार पर होंगे, कोई प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहा है, कोई नर्सरी से प्राइमरी की तरफ जा रहा है, तो फिर भाई कोई जो है सेकेंडरी को अलविदा कहते हुए अपने सपनों की उड़ान भरते हुए जिंदगी के एक नए सफर को पूरी तरह से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। एंड इट कुडंट गेट मोर एक्साइटेड यार, जब आप अपने बच्चों को वो हैट उड़ाते हुए देखते हैं, वो गाउन पहनते हुए देखते हैं, भाई अलग सी खुशी होती है ना। ऐसा लगता है यार वो नन्ही मुनी सी जान जो अभी भी मेरे गोद में थी इतनी बड़ी कब हुई मुझे ये पता ही नहीं चला। एंड इससे ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। पता है क्या, पेरेंटिंग जो है ना ये बड़ी कमाल चीज़ है यार। जब बच्चे शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये कब बड़े होंगे, कब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि वक्त जो है ये कहीं थम क्यों ना गया, रुक सा क्यों ना गया। सच कह रही हूँ, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके पास हैं, जितना हो सके आप उनके साथ वक्त बिता सके ना यार बता लें, क्योंकि कब ये उड़ जाएंगे, ये पंछी कब आज़ाद हो जाएंगे, ये बात हम शायद बाद में समझ ही ना पाएं। सो मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू हैव स्पेशली ड्यूरिंग दीज वेकेशंस। जाओ यार उनके साथ दिल से एंजॉय करो। अरे आओ बहन चुगली करें, यानी कि किटी पार्टीज तो चलती रहेंगी। अरिजीत सिंह की आवाज़, निकिता गांधी का साथ, एनी अगला गाना, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: was and what a lovely track it is. गजब तो है ही दिन. Finally weekend वाला दिन आ गया, तो इसे गजब ना कहें तो फिर क्या ही कहें.
1: मिर्ची अंशु
0: वैसे अगर गजब की बात करें तो वो तो ये एक्सपीरियंस भी 101% होने वाला है. वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. जिंदगी में मिठास और साथ ही स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ, एंड साथ ही तारीख आपको पूरी तरह से नोट कराने की तैयारी भी करवाने वाली हूँ. वेल, इतना याद रखिए, एक बार फिर से अगर दुनिया भर के एथलीट्स को देखना है जो कि कतर में यूनाइट होने वाले हैं थ्रू स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग चैलेंजेस, तो ये कारनामा होगा 20th of March को. 20 मार्च साल 2027 बिल्कुल विजिट कतर ने अनाउंस किया है द इनॉग्रल एडिशन ऑफ आयरन मैन 70.3 दोहा. क्या बात है यार, माना कि अभी वक्त है, माना कि अभी देरी है, लेकिन इतना समझ जाएं कि दुरुस्ती से लौटने की तैयारी कतर ने 101% कर ली है. हम जैसा कि जानते हैं, अगर स्पोर्टिंग हब की बात करें, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को देखने की कोशिश करें भैया, तो कतर का नाम जो है इसमें सबसे ऊपर आता है. एंड एक बार फिर से अपनी इस पहचान को दुनिया भर में कायम रखते हुए, अलग तरह से शाइन करते हुए, अगर कोई नज़ारा आपको देखने को मिलेगा तो वो होगा ट्रायथलॉन के जरिए. एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. तो अगर आपको लगता है कि आपको भी इस लिस्ट में शामिल होना है, या तो फिर इन एथलीट्स को देखकर अपनी जिंदगी में थोड़ा इंस्पिरेशन डालना है, तो अभी से कूदना, फांदना, स्विमिंग करना सब कुछ जो है ना शुरू कर लो. नहीं, वैसे साइकिल की रेस तो हमने बचपन में काफी लगाई है, दौड़ भाग भी जब जब घर पे डांट पड़ती थी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि रफ्तार से कैसे भागना है. पानी में डुबकी लगाने से बस डर लगता था, तो उसमें जरा पीछे हमारे बदले आप आ जाना सब्स्टिट्यूट के तौर पर. कविता सेठ की आवाज, नीरज श्रीधर का साथ, बंधु 2.0, ये गाना आपके लिए फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Amici.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका वो रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। I love you, but मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, I love you, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊं।
2: नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
0: Catch Officer Brown.
5: Officer Brown.
0: Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
5: जबरदस्त ट्रैक्स।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: राहत और सुकून की बात करें और ऐसे वक्त ऐसे मौके में इन्हें याद ना करें तो फिर किन्हें करें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस के तड़के के साथ मैं तो आ चुकी हूँ, लेकिन अगर राहत एंड सुकून की बात करें तो वीकेंड आते ही ये सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ में जरूर आती हैं। यार सच कहूँ, ह्यूमन माइंड ना बड़ा कमाल है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बस वीकेंड आ जाए उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने सारे प्लान्स बनाते हैं, दोस्तों से मिलना है, सब कुछ। एंड जरा सोचे वो हफ्ते की दो दिन की खुशी के लिए कहीं ना कहीं हफ्ते का जो मेजर चंक है यानी कि 5 दिन हम इसी थॉट इसी ख्याल में निकाल देते हैं। लेकिन पता है क्या, मुझे ना बचपन से मेरे पापा ने एक बात सिखाई है, जिंदगी को अगर मदमस्त होकर जीना है तो आपको एक ही काम करना है कि जिस पल आप जहां हैं उसे ही मदमस्त समझ कर खूब ज्यादा एंजॉय करना है। तो जरा सोचे अगर उन हफ्ते के 5 के 5 दिनों को भी आप हर एक काम के जरिए उतने ही एंजॉयबल मैनर में बिताएं तो हर दिन लाइफ का कितना एक्साइटिंग एंड कितना अच्छा लगे। देखो यार, लाइफ का फंडा जो है ना ये काफी सिंपल है। लाइफ की फिलॉसफी भी एक ही बात कहती है कि जिस भी काम में आप हो, जिस भी रिश्ते में आप हो या जो भी आप इन्वॉल्व हुए हुए हो जिस भी काम में, भाई उससे दिल से प्यार करना शुरू कर दो। एंड जिस दिन आपने ये करना सीख लिया ना, इतना समझ जाना राहत और सुकून किसे कहते हैं ये बात आपको जरूर पता चल जाएगी। कई बार लाइफ में ऐसा लगेगा कि भैया बहुत स्ट्रेस है, ये ऐसा है, वो वैसा है। भाई साहब, जिस पोजीशन पर आप हैं ना, उस पोजीशन पर आने के लिए न जाने आज की डेट में कितने लोग कगार में लगे हुए हैं। तो बस इस बात को ध्यान रखें एंड जिंदगी को मदमस्त होकर जीते रहें। अभी फिलहाल जुबिन नौटियाल की आवाज में अगला गाना एंजॉय करते हैं। टिक के बने रहते हैं कतर के नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन के साथ। मर्जी इट्स ऑल, एंजॉय।

0: चीज स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
3: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
2: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: शायद इसी का नाम तो जिंदगी है।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। रास्ते नजर आते हैं लेकिन मंजिल दिखाई नहीं देती। दिल दुआ करता है लेकिन जवाब मिलने में वक्त लगता है। लेकिन शायद इसी का नाम तो जिंदगी है ना। आज अगर वक्त मुश्किल है तो याद रखिए, वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता। ना खुशियां हमेशा रहती हैं ना परेशानियां। जब अंधेरा गहरा हो तो हिम्मत मत हारना। जब रास्ते बंद लगने लगे तो भरोसा मत छोड़ना। और जब सब कुछ आपके हिसाब से ना हो रहा हो ना, तब उस रब पर यकीन रखना जो हमेशा आपके लिए आपसे बेहतर सोचता है। हो सकता है कि आज आपका इम्तिहान चल रहा, लेकिन कहते हैं ना, हर इम्तिहान के बाद एक नया सफा खुलता है। और जब वक्त बदलता है ना, तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होता है। और इसी बात पे कुछ तो पंक्तियां हैं जो मेरे पापा ने लिखी, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हौसलों को टूटने मत देना, रास्तों को छूटने मत देना, रब पर इतना भरोसा रखना कि अंधेरों को रोटने मत देना। वक्त जरूर बदलेगा एक दिन मुस्कुराकर, बस अपनी हिम्मत को कभी खुद से दूर होने मत देना। तो चलिए, अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थैंक यू मैसेज हो जाए, क्या कहती पब्लिक? 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: यार सच कह रही हूँ, कतर की जो गर्मी है ना, ये बिल्कुल उस रिलेटिव की ही तरह है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई वही रिलेटिव जो दो दिन के लिए कहे लेकिन रहे तीन से चार महीने तक। नहीं, पहले के दिनों में, पहले के ज़माने में ऐसा ज़रूर हुआ करता था। अगर आज की डेट में हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई दफ़ा ऐसा फील होता है कि भाई आज तो वेदर जो है ज़रा सा ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कार तक पहुँचते हैं ना, लगता है कि किसी ने अवन जो है प्री हीट करके हमें अंदर डाल दिया हो। और अगर आज आप घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को अपने साथ ज़रूर लेकर चलना है। आपका फ़ोन, आपका वॉलेट, आपकी कीज़ एंड सबसे ज़रूरी भाई साहब पेशेंस, क्योंकि इस गर्मी ने कुल मिलाकर हम सबको ऐसा हिलाया है ना कि इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आंकड़ा जो है बिल्कुल 50 तक पहुंच चुका है, टेम्परेचर यानी कि डिग्रीज की बात कर रही हूँ। एंड जरा देखिए ये क्या ही कहते हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
0: Well, आपका नाम भी जानते हैं, आपके कारनामे को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपडेट तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन सबसे खास बात जिसे आपको अपडेटेड रखनी है वो ये कि खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीजिए, जो भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखिए। बाकी आपके कलेजे के ठंडक के लिए मैं हूँ, टक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा अभी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
3: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार सच कह रही हूँ, गर्मी के दिनों में ना ये दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु,
0: पहली बाहर निकलना और दूसरी पार्किंग ढूंढना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त लगता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे लिए निकाल ही दिया है। वेल, इस समर ओल्ड दोहा पोर्ट लेकर आए हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की पूरी सीरीज, जो काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। एंड ये चलेंगे 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर आपको लगता है इवनिंग में आउटिंग या फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ चिल करने का आपको प्लान बनाना है, तो बिल्कुल ओल्ड दोहा पोर्ट आप 101% पहुंच ही सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो मिर्ची की पलटन जो है पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार। खाने पीने का इंतजाम जो है वो बस आप कर लें। लेकिन अगर पार्किंग की बात करें तो मीना डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सेस अब डेली दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्हीकल्स के लिए ओपन रहेगा। मतलब अब पार्किंग का ये जो टेंशन है ये जिंदगी में जरा कम हुआ। एंड सबसे खास बात यह है, अगर मैं वॉले पार्किंग की बात करूं तो अब रेगुलर रेट्स की आधी प्राइस में आप पार्क कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप मिनिमम स्पेंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉले पार्किंग आपको मिल ही जाएगी। बढ़िया जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सारे के सारे न्यू एक्सपीरियंसेस ओल्ड दोहा पोर्ट में मिलेंगे। जाइए इस गर्मी के दिनों में वो ठंडी का मजा जो है उठाई लीजिए। कलेजे की ठंड, उसी की बात करें। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: क्यों?
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

देखो अच्छे दिन तो आए हैं वीकेंड वाले, साथ में अच्छे रेट्स भी आए हैं। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। वेल, वो सारे लोग जो कहते हैं ना हमारी जिंदगी में अच्छे दिन थोड़े जल्दी आए, यानी कि सैलरी जो है थोड़ी जल्दी क्रेडिट हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आए हैं, जल्दी खत्म होंगे, हमारी देरी से आएंगे थोड़ी देरी से खत्म होंगे, होना तो वही लेकिन हाँ, बचत करने का अच्छा खासा मौका है क्योंकि एक्सचेंज का रेट काफी कमाल है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.89। इसके साथ ही भाई साहब अगर पाकिस्तानी रुपीज की बात करें 6.72, अगर नेपाली रुपीस की बात करें 41.28, बांग्लादेशी टका 33.85 एंड पूरी तरह से लंकन रुपीस ने डंका बजाया हुआ है एंड द रेट इज 92.45। घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदीगाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
2: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
1: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट,
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हेलो शार्प्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं,
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
6: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: है छुट्टी आई है।
1: मिर्ची अंशु
0: हाँ, इतनी खुशी अब बताएं तो क्या ही बताएं और कैसे बताएं। सच कह रही हूँ, वीकेंड में छुट्टी की जितनी मुझे खुशी नहीं होती ना, उतने ज़्यादा किचन से मुझे फ्रीडम मिलेगी इस बात की खुशी होती है। देखिए, मेरी लाइफ का फंडा बड़ा क्लियर है कि हफ्ते भर मैं काम करूँगी, खाना भी बनाऊंगी, लेकिन वीकेंड में चाहे जो हो जाए, मैं जो है थर्सडे एंड फ्राइडे तो खाना ना बनाने वाली। यार, जो किचन से छुट्टी वाली खुशी है ना, जितनी भी लड़कियाँ इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है ज़रूर समझ सकती हैं। यार, खाना बनाना इज स्टिल ईजी, लेकिन खाने में क्या बनाना है, ये जो सवाल है ना, आपको पूरी तरह से हलकान कर देता है। तो इस बार के मेरे वीकेंड का प्लान पूरी तरह से सेट है, जहां पे मैं एक तरफ मैंगो फेस्टिवल जाने वाली हूं, दूसरी तरफ अगर मैं कुछ करूंगी तो भैया अरबिक क्विजीन एक बार फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी। एंड अगर आपको लगता है इन दोनों के अलावा मुझे कुछ और ट्राई आउट करना है तो मुझे ऑप्शन जरूर भेजना 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची1खतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची बंदीगराम अंशु। मस्सलाम हबीबी, एंजॉय।

0: बड़े होते होते रियलाइज होता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या चीज होती हैं, और हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागने का मन करता है। लेकिन बचपन में उल्टा था, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भागा करते थे कि मुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जल्दी बड़ा होना है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi, and I still remember. हम या तो अपने छोटे भाई बहनों को पालने का काम किया करते थे, हमें बड़ा मजा आता था बड़े बनने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, या तो हमारे गली कूचे का कॉलोनी का कोई भी पपी होता था या कोई किटन होती थी तो उसका जिम्मा हम ले लिया करते थे। मतलब अगर ऐसा कुछ मिल जाता था ना हमें, तो स्कूल से आए नहीं, बैग रखा नहीं और सीधे उस पपी या किटन के पास। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, बचपन में ना मैंने कुछ दिनों के लिए एक बिल्ली पाली थी, उसका नाम रखा था हमने हेमा। और है ना, उस बिल्ली का जिम्मा मैंने ऐसा लिया कि मैं अपना खाना पीना भूल जाया करती थी, उसी को देखा करती थी। उस बिल्ली ने हालांकि मुझे खूब स्क्रैचेस दिए, लेकिन फिर भी मैं उसकी मोहब्बत में इतनी पागल थी कि मैंने उसको पाला। लेकिन मेरी मोहब्बत ना उस बिल्ली की मोहब्बत से ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वो बिल्ली मेरी मोहब्बत से ही डर गई यार। एक दिन वो बिल्ली पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और तब से लेकर आज तक हेमा सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानियों में ही रह गई, वो मुझे कभी नहीं मिली। ऐसा ही कुछ अभी कल की बात है मेरे साथ हुआ कि कल शाम को मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और एक किटन मुझे नजर आया, एंड मैंने उसको देखा, मैंने उसको हाय बोला, एंड उसको लगा कि मैंने उसको घर के अंदर इनवाइट कर दिया है, और वो आ गया सीधा चल के। मैंने भी उसे मना नहीं किया, वो आया, मैंने उसे खिलाया पिलाया, थोड़ी देर में हमारी दोस्ती हो गई, जो कि मेरी बिल्लियों के साथ तब से लेकर आज तक नहीं हुई थी इतनी अच्छी तरीके से। एनीवेज, वो थोड़ी देर में आके मेरी गोद में बैठ गया, मैंने उसको खूब मसाजे दी, इतना प्यार किया, और मेरा दिल उसके ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था। लेकिन ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग वो बिल्ला भाग गया, एंड क्लियरली उस बिल्ले को मेरे अंदर रेड फ्लैग्स नजर आ गए थे, क्योंकि मुझे भी उससे हद से ज्यादा मोहब्बत जो हो गई थी, डर के मारे भाग गया होगा। बस आज का ये किस्सा पुराने हेमा के किस्से से जाके जुड़ गया कि किस तरीके से हमें पेट से मोहब्बत हो जाया करती थी। शायद ये चीजें आज भी नहीं बदली हैं, वो अलग बात है कि यार एक किटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन बिजली के बिल भरने में ना मुझे बड़ी मौत आती है। एनीवेज, अभी तो हम चलते हैं मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए उसी तरफ जहाँ 90s और अर्ली 2000 की दुनिया बसी हुई है। सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga.
1: Milci, burga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गा मा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गा मा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गा मा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊंचाई है जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊंचाइए ऊंचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जीत मूवी का जो गाना है ना यारो यारा, उसकी जो कोरियोग्राफी है और उसके जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं, वो भले हमें कितने भी फनी क्यों ना लगे, लेकिन आज भी जब किसी पार्टी में यारो यारा बज जाता है ना, हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं यार, अपना कुछ नया नहीं निकालते हैं।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, सनी पाजी तो छा गए थे जी इस स्टेप के बाद वाकई में, and छा गई थी ये फिल्म भी। हाँ, it was a super duper hit। लेकिन ये फिल्म की एक बड़ी खास बात रही, और वो ये कि 24 साल पहले करिश्मा कपूर के पेरेंट्स बबीता जी और रणधीर कपूर जो हैं, उन्होंने भी एक फिल्म करी थी जिसका नाम था जीत। एंड देन 24 साल बाद करिश्मा आल्सो डिड दिस फिल्म जिसका नाम था जीत। और ये फिल्म और भी ज्यादा खास हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजन कि जीत की सेट्स पर ही तबू एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म साजिद नाडियाडवाला, दे केम क्लोजर। वेल एक्चुअली तबू और साजिद नाडियाडवाला यूज्ड टू बी फ्रेंड्स अर्लियर एज वेल, क्योंकि तबू दिव्या भारती की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एंड पोस्ट दिव्याज डेथ तबू एंड साजिद नाडियाडवाला बिकेम फ्रेंड्स, एंड तबू कुड अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एट दैट टाइम। लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई दोनों को ही नहीं पता लगा, एंड दैट हैपेंड ऑन द सेट्स ऑफ जीत। इवेंचुअली इस रिश्ते ने कोई मोड़ नहीं लिया बिकॉज ऑफ द रीजन की तबू फेल्ट कि साजिद नाडियाडवाला इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे, वो अपनी वाइफ दिव्या के लॉस से निकल ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तबू डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। एंड देयर इज वेयर दिस रिलेशनशिप एंड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर बिगिंस। हालांकि साजिद नाडियाडवाला एंड तबू आर स्टिल रियली गुड फ्रेंड्स। साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा ही फेमस शेर है, और ऐसी लव स्टोरी सुनती हूँ ना तो वो शेर मुझे अक्सर याद आ जाता है। कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 90s की बड़ी हिट फिल्म जीत, इसके लिए कहा जाता है कि यार ये फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय टू ऑफ बॉलीवुड्स क्लासिक।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दोज टू बॉलीवुड क्लासिक्स आर मुकद्दर का सिकंदर, जो कि ऑफ कोर्स अमित जी बच्चन जी की थी, एंड द अदर वन इज राजपूत, जो कि राजेश खन्ना स्टारर फिल्म थी। एंड इन दोनों मूवीज के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि जीत में भी देखे गए हैं। अब ये इत्तेफाक है या इंस्पिरेशन है, ये तो इस फिल्म के डायरेक्टर ही जाने। बट हाँ, मुकद्दर का सिकंदर जिस तरीके की फिल्म थी, उससे जीत फिल्म का जो काफी तालमेल है वो बैठता है। एंड जीत वॉज वन ऑफ दोज फिल्म जिसमें सलमान खान का गुड बॉय इमेज वाला रोल था, जिसमें वो एकदम मामाज बॉय, सीधे साधे से लड़के थे। एंड सनी देओल ऑन द कॉन्ट्ररी, ही वॉज प्लेइंग द नेगेटिव रोल, द आक्रोश वाला रोल। एंड आई थिंक सनी देओल का उस टाइम पर यही वाला जोन चल रहा था। लेकिन मजे की बात ये हुई कि सलमान खान इतने हाईलाइट नहीं हुए इस फिल्म के अंदर जितना सनी देओल हुए अपने रोल को लेकर, क्योंकि वो रोल इतना लाउड था कि सबने उसे देखा भी और सुना भी। तो हुआ ये कि इस फिल्म में सलमान खान की जो पोजीशन थी वो थोड़ा सा बैक सीट ले चुकी थी, एंड सनी देओल फ्रंट पेज पे खेल रहे थे। लेकिन जब यही चीज डर मूवी में हुई, जहां शाहरुख खान के नेगेटिव कैरेक्टर ने सनी देओल के पॉजिटिव कैरेक्टर को ओवरशैडो कर दिया, तो सनी देओल बड़ा बुरा मान गए थे। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई यार, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या थी? ये तो किस्मत का खेल है यार। एक तरफ आप चले, कहीं दूसरी तरफ कोई और चला। जिसकी किस्मत में चलना लिखा था वो चला, और जिसकी किस्मत में लिखा था ना चलना तो वो ना चला। चलो अभी तो आप और मैं आगे चलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100-on-100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: emergency helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना, तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: काजोल के अलावा करिश्मा कपूर वाज आल्सो वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस इन द 90s जिन्होंने अपने यूनिब्रो लुक को बहुत ही प्राउडली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैरी किया था। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, करिश्मा कपूर, 90s का जमाना हो, 2000 का जमाना हो या आज की बात हो, हमेशा से ही काफी फैशनेबल रही हैं और वही फुटस्टेप्स करीना कपूर ने भी फॉलो किए हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत करिश्मा कपूर से हुई है और करिश्मा कपूर के ग्लॉसी लिप्स और कलरफुल हेयर बैंड्स, दे बिकेम अ मेजर स्टाइल स्टेटमेंट फॉर गर्ल्स इन दोज टाइम्स। इनफैक्ट जब राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा कपूर का नया लुक आया तो उस लुक ने तो तहलका मचा दिया था। एंड देन हीरो नंबर वन के जो लुक्स है करिश्मा कपूर के, माय गॉड, आई जस्ट लव्ड हर फैशन स्टेटमेंट फ्रॉम देन टिल नाउ। बट यू नो, करिश्मा का नाम लोलो कैसे पड़ा? वेल, उनका नाम इज इंस्पायर्ड बाय जीना लोलो ब्रिगिडा, जो कि एक फेमस इटालियन एक्ट्रेस हैं और उनकी मदर बबीता जो थी वो जीना की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। हो सकता है मैंने ये बात आपको चलते फिरते पहले भी बताई हो, लेकिन बार बार इस बात को बताने में ना बड़ा मजा आता है। बिकॉज जस्ट इमेजिन समवन लाइक करिश्मा, जिनके नाम पर उनके फैंस अपने बच्चों के नाम रखते होंगे, उनका खुद का निकनेम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एन अनदर एक्ट्रेस। बट करिश्मा कपूर कपूर खानदान की काफी बड़ी इंस्पिरेशन रही है बिकॉज ऑफ द रीजन की 17 साल की बाली उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रेम कैदी कर ली थी। एंड डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ फेमस फैमिली, उन्होंने अपने आप को हर कदम पर प्रूव किया है विदाउट एनी मेल कपूर बैकिंग हर डेब्यू। हां, इनफैक्ट करिश्मा कपूर ने तो नेशनल अवार्ड भी जीता हुआ है फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द मूवी दिल तो पागल है 1997। कमिंग अप मोर ऑन करिश्मा कपूर ऑन हर बर्थडे टुडे एंड विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है, हैं?
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइन्स विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर्स मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: How is the Josh?
5: Hi, sir!
4: How is the Josh?
5: Hi, sir!
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इस बात में कोई शक नहीं है कि करिश्मा वाकई करिश्मा थी 90s के दौर की। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यू नो, डेविड धवन ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि करिश्मा जो है ना, वो बिल्कुल पैसा वसूल एनर्जी लेकर आती है, एंड शी वाज हिज गो टू एक्ट्रेस फॉर कॉमिक टाइमिंग ऑलवेज, जिसकी वजह से चीची यानी कि गोविंदा एंड करिश्मा कपूर की जोड़ी वॉज अ हिट हिट हिट। डेविड धवन की मूवी हो और उसमें ये दोनों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था उस दौर में। एंड वो अक्सर शूट करते टाइम सेट्स पर मजाक के तौर पर जब करिश्मा की एनर्जी लो हुआ करती थी ना, तो वो करिश्मा से यही बात किया करते थे कि यार मेरा जैकपॉट लोलो वो कहाँ है, उसे अंदर से निकालो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गोविंदा और लोलो की फेमस जोड़ी, तो देयर इज दिस टाइम जब कूली नंबर वन की शूट चल रही थी और करिश्मा जब गोविंदा के साथ शूट कर रही थी, तो एक सीन में उनका हंसना बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे टेक्स दिए इस सीन को लेकर। और डेविड धवन जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो यूजुअली एक्टर्स की स्पॉन्टेनिटी को इनकरेज करने के लिए काफी फेमस थे, मगर इस सीन में तो डेविड धवन ने भी हाथ जोड़ लिए थे कि करिश्मा किसी तरीके से हंसना बंद करें और एक स्ट्रेट फेस और स्ट्रेट एक्सप्रेशंस दे पाए। कमिंग अप मोर ऑन करिश्मा कपूर टुडे ऑन हर बर्थडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
1: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: love.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज के टाइम पर जब हम करिश्मा कपूर को अपनी पर्सनल लाइफ से स्टेप आउट करते हुए देखते हैं कि वो कहीं जा रही है या कहीं से आ रही है, जो यूजुअली पेपराजी कैप्चर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि करिश्मा इज़ वेरी वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल लुक्स, चप्पल्स एंड सिंपल सूट्स के अंदर, सिंपल कलर्स के अंदर वो इधर उधर घूमती हुई नजर आती है. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज ही वो ऐसी हैं, वो हमेशा से ही इतनी सिंपल रही हैं. मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा. हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड इन फैक्ट उन्हें अपनी इस सिंपलिसिटी की वजह से ना डांट भी पड़ी थी अपनी मदर बबीता जी से. बिकॉज देयर वाज दिस वन टाइम कि करिश्मा कपूर एक मूवी की प्रीमियर के लिए ना चप्पल पहन के ही चली गई थी. अब जब वो चप्पल पहन के गई तो बबीता जी बड़ी नाराज हुई और उन्होंने डांटते हुए कहा कि तुम कपूर हो और तुम इस तरीके से स्टेप आउट नहीं कर सकती हो. And since then, Karishma became one of the most well-dressed stars around. Coming up more on Karishma ka Karishma on her birthday today. And you stay tuned with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आमिर खान पीके वाज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उससे मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान छिल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot
4: बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Sara Zamana. Sara Kadivana.
0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: There was this one time जब करिश्मा कपूर राजा हिंदुस्तानी के लिए शूट कर रही थी और सेट्स पर पैनिक मचा हुआ था. मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा. हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड ये सीन बड़ा फेमस सीन है, बड़ा ही एपिक सीन है राजा हिंदुस्तानी का, वो रोमांटिक सीन जहां पर हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं. अब ये जो रेन किस वाला सीन है, इस सीन को लेकर करिश्मा कपूर बहुत नर्वस थी, क्योंकि उस जमाने में बॉलीवुड के लिए ये चीज बड़ी बोल्ड हुआ करती थी यार. तो इस सीन को शूट करने के लिए जो नर्वसनेस थी करिश्मा कपूर की, उसको कम करने के लिए जो सेट पर लोग थे, कितने क्रू थे और कितने सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया था. ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रूज एंड द डायरेक्टर एंड वन कैमरामैन, यही लोग थे वहां पर मौजूद, सो दैट करिश्मा कुड फील कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दिस सीन. एंड इट पेड ऑफ रियली वेल बिकॉज दिस सीन वेंट ऑन टू बिकम एन आइकॉनिक सीन. इन फैक्ट जो सीन थप्पड़ वाला था ना, जिसमें आमिर खान करिश्मा कपूर को थप्पड़ मारते हैं, यहां पर करिश्मा कपूर बिल्कुल नहीं चूकी. उन्होंने साफ बोल दिया कि बॉडी डबल की जरूरत नहीं है, मैं खुद ये सीन करूंगी, और उन्होंने रियल लाइफ में वो थप्पड़ खाया इस सीन को परफॉर्म करने के लिए. प्रोफेशनलिज्म बाबू भैया, प्रोफेशनलिज्म. इस थप्पड़ की गूंज तो उस सीन में आज तक सुनाई देती है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtua la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। I love you, but मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, I love you, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पकड़।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन, It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: करिश्मा कपूर कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, ये बात तो क्लियर है। अब वो करीना कपूर की रेफ्यूजी फिल्म के लिए प्रिपरेशन करवाना हुआ, उनके साथ साथ उनके डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवाना हुआ, या फिर एक छोटी सी लड़की को ऑटोग्राफ देना हुआ, जब उस लड़की ने करिश्मा को माधुरी समझकर ऑटोग्राफ लिया। मिर्ची विशेस करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे विद करिश्मा का करिश्मा। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And this really happened in the 90s, जब करिश्मा कपूर एक डांस कॉस्ट्यूम पहने हुए, लंबी सी चोटी और फ्लैशी लहंगा पहने हुए एक स्टेज शो कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई बैक स्टेज में और कहती, माधुरी दीदी एक ऑटोग्राफ दे दो। करिश्मा ने मुस्कुरा कर वो ऑटोग्राफ दे दिया। एंड लेटर ऑन जब उन्होंने इस किस्से का कहीं जिक्र किया था तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा था कि दैट वॉज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट शी एवर रिसीव्ड, विच शोज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी दैट दिस पर्सन कैरीज। इन फैक्ट दिल तो पागल है करने के लिए काफी सारी एक्ट्रेसेस ना कर चुकी थी, बिकॉज कोई भी माधुरी दीक्षित के साथ सेकेंड लीड नहीं करना चाहता था। एंड करिश्मा कपूर वॉज द ओनली एक्ट्रेस हु सेड यस, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी कोई इनसिक्योरिटीज थी ही नहीं। एंड क्लियरली हर एक 90s किड की तरह करिश्मा कपूर वॉज ऑल्सो अ डाई हार्ड माधुरी दीक्षित फैन। वो अलग बात है कि दिल तो पागल है करने के लिए, सिंस करिश्मा कपूर वॉज डांसिंग विद माधुरी दीक्षित, उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, खूब सारी डांस प्रैक्टिसेस करनी पड़ी, इंजरीज भी हुई ड्यूरिंग द रिहर्सल्स, लेकिन फिर भी करिश्मा कैरीड ऑन। दैट इज करिश्मा का रियल करिश्मा। विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बोतल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: DDLJ से उदित नारायण की आवाज में दिस गाना इस कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना.
2: Mirchi 90s कैसेट.
1: रुक जा ओ दिल दीवाने, ओए होए. ये गाना सुनकर तो हमारा दिल भी दीवाना हो गया था वाकई में. लेकिन ये गाना कितना क्यूट है यार. मतलब एक बंदा जो है वो अपने दिल से बात कर रहा है कि यार सामने एक लड़की है जो अभी अभी दिखी है, लेकिन ए दिल तू तो रुक जा यार, थम जा जरा. इतना क्या एक्साइटेड है उस लड़की को देखने के बाद. और लड़के को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की है या है जादू या खुशबू है या फिर नशा. और वो अपने दिल से बार बार यही कह रहा था कि यार अगर वो पास आए तो छू के मैं देखूं जरा कि वो वाकई में एग्जिस्ट करती भी है या सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है. अपार्ट फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल लिरिक्स, देयर इज वन मोर थिंग अबाउट दिस सॉन्ग. इस गाने के एंड में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे राज जो है वो सिमरन को छोड़ के, यानी कि फर्श पे गिरा के और एकदम उंगाल के निकल जाता है. वेल, ये जो सीन था ना, ये हमने ऑन स्क्रीन देखा तो हमें बड़ा मजा आया, काजोल के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक थे. लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन स्क्रिप्टेड नहीं था और काजोल के इसके बारे में नहीं पता था. ये सिर्फ और सिर्फ आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की मिली भगत थी. उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ऐसा करेंगे कि एंड में ना काजोल को इस तरीके से गिरवाएंगे और बड़े मजे आएंगे. और उसमें काजोल के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल रॉ निकल के आएंगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड. तो आज जो हम वो एक्सप्रेशंस अभी भी देखते हैं इस फिल्म में काजोल के चौके हुए से, दोज आर रियल एक्सप्रेशंस बिकॉज शी हैड नो आइडिया दैट व्हाई डिड शाहरुख ड्रॉप हर. एंड चलो जी, जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ. यू एंजॉय द ट्रैक. अपना ख्याल रखना और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लेना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, क्योंकि हम है राही प्यार के. लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. और बस यू ही स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: करंट दौड़ गया मेरे शरीर में। गाड़ी आपने कहीं खुले में पार्क कर दी और उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी बैठते उछल पड़ते, ओ माय गॉड, ये सोने कहां से बन गई मेरी गाड़ी। फिलहाल बस बोलो गौरव आ गया है, शाम के 4:03 के करीब होने जा रहे हैं।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल, यहाँ बता दूं कि मौसम अपने जबरदस्त गर्मी के प्रचंड रूप को हमें दिखा तो रहा है, लेकिन हम भी एकदम तुले पड़े। पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि गाड़ी की पार्किंग सही जगह मिल जाए करे। इस चक्कर में शेडेड पार्किंग कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। भले ही चल के थोड़ा दूर आ जाएंगे ठीक है, लेकिन जब वापस गाड़ी बैठे कम से कम ठीक ठाक तो जाए। वैसे इन सब के बीच आ गया मस्त मौला गौरव लेकर शाम शानदार। हालांकि एक बात से दिल जरूर दुखी है कि कल रात हमने पूरी कोशिश की, अलन्नाबी ने पूरी कोशिश की, टीम कतर ने अपना बेस्ट दिया, पर हम शायद वो ना कर पाए जिसकी हमसे उम्मीद की गई थी। लेकिन हमारे कतरी फैंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जब कतर कहीं जाता है तो वो सिर्फ कतर नहीं जाता है, उसके साथ उसका कल्चर, वहां के लोगों की चीजें, वहां के लोगों का जोशो खरोश, वहां के लोगों की मेहमाननवाजी सब कुछ जाती है। और इस बार वर्ल्ड कप में टीम चाहे जो भी वर्ल्ड कप जीते, हमारा कतर भले ही फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे फैंस के अगर जीतने की बारी आएगी तो ये अवार्ड कतर को ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे कतर ने एक शानदार फैन जोन बनाकर रखा, और ऐसे फैंस जो कि बकायदा गतरे में कंदूरे में अपने नजर आए और थोप पहनकर एगाल के साथ हर गोल को सेलिब्रेट किया। एंड इतना ही कहेंगे कि कतर ने, यूं तो हमारी कतर फुटबॉल टीम ने बहुत सारे ऐसे मौके दिए जिसको हमने चेयर भी किया, एंड इस बार ना सही अगली बार सही। ऑल द बेस्ट टू टीम कतर। हम अब 20-30 की तैयारी करेंगे। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त वाला गौरव आपके साथ शाम शानदार में। इट्स हॉट। Oh, yeah.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने
0: की? तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरी बात सुन लो
0: भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
3: Catch Officer Brown. Officer Brown tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
3: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: आपको कहानी सुनने में मजा आता है कि कहानी बनते हुए देखने में मजा आता है? Well, फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 4:19 पर चल रहा है मेरे साथ शाम
1: शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.
0: हाँ जी, तो मैंने आपसे ये पूछा कि आपको कहानी सुनने में मजा आता है कि कहानी बनते हुए देखने में मजा आता है, और मेरा ये मकसद इसलिए था क्योंकि कतर में मैं जब आया ना तो लोगों ने मुझे बहुत कहानियां सुनाई। तुझे पता है गौरव, मुशरिफ पहले मुशरिफ था ही नहीं, यहाँ पर तो सब ऐसी दुकानें थी, पुरानी पुरानी टाइप की बिल्डिंग्स थी, पूरी खत्म होकर अब देखो कितना खूबसूरत लगता है। और जब मैं कतर में पहुंचा तो मैंने एक अल असरी सूख के बारे में सुना था। अब पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अजगाल ने कहा है कि उसके डेवलपमेंट एंड रिफर्बिशमेंट का काम पूरा हो गया है। यस, अल असरी सूख और इसके अलावा सूख अल असरी के अलावा फाले सूख, जो कि दोहा के एकदम हार्ट में है, वो सूख वाकिफ से पीछे वाली गली से नजर भी आएगा। यस, वो सूख अल असरी अब बिल्कुल तैयार है, रिफर्बिश्ड होकर एकदम चमचमाते मार्बल वहां लग गए हैं। कुल मिलाकर दोहा के एकदम सेंटर में, हार्ट ऑफ दोहा में अब एक बार फिर से कमर्शियल एंड टूरिज्म फैसिलिटीज यहां पर घर करेंगी। एंड कहा यही जा रहा है कि बहुत पुराना बाजार था जिसको फिर से रिफर्बिश कर नया लुक दिया गया है। तो कह सकते हैं कतर में एक चेंज मेरे सामने हुआ। मैं भी लोगों को बता सकता हूं कि पहले यहां ऐसा था, अब यहां पे ऐसा हो गया। और बड़ा अच्छा लगता है यार जब लोग बोलते हैं कि पहले दूर दूर तक कुछ था नहीं और आज कतर जिस तरह से बना है, आप यकीन नहीं कर सकते कि पिछले 15 सालों के अंदर कतर इस कदर बदल चुका है कि जो यहां आएगा वो कहेगा ना भाई ये कतर नहीं है, कुछ और है, ये कुछ और देश है, ये वो हो ही नहीं सकता। तो ये होती है रफ्तार ऑफ डेवलपमेंट, एंड इसके लिए अजगल को दिल से सैल्यूट जो इस तरह के काम करती आ रही है और कई सालों से जिम्मेदारी निभा रही है, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कतर डिजर्व्स द बेस्ट और वो वैसा ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड मस्ट मोरओवर आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर, इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय KIMS हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: क्या क्या कल से मुसाइल ट्राम की सर्विस नहीं मिलेगी? यस 26 जून यानी कि कल से आपको कतर रेलवे ने अनाउंस कर बता दिया है कि आपको लुसेल ट्राम सर्विसेज नहीं मिलने वाली है और ये 5th ऑफ जुलाई तक होगा। 26 जून से लेकर संडे 5th जुलाई तक आपको नहीं मिलेगी लुसेल ट्राम सर्विस और ये टेम्प्रेरी सस्पेंशन आने वाले टाइम के लिए इसलिए किया गया है ताकि वहां पर कुछ बढ़िया जो यू नो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ट्राम नेटवर्क की वहां पर कुछ बढ़िया एनहांसमेंट का काम चल रहा है और उसी के चलते आपके लिए ये लुसेल ट्राम जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। बड़ी बात यह है कि ये एफर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में पैसेंजर्स को बहुत सारा फायदा मिले, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी मुसीबत तो आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन उतनी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। इस दौरान आपके लिए ऑल्टरनेट बस के रूट्स बनाए गए हैं और आपको मेट्रो एक्सप्रेस भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ M154 की एक न्यू मेट्रो लिंक बस भी लॉन्च कर दी गई है और ये भी वो रूट होगा जो इस पूरे ऑपरेट हो रहे एरिया को कवर करेगा ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए। एंड लुसेल ट्राम पूरे के पूरे 26 जून से 5 जुलाई तक सस्पेंड रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी भौकाल में कदम मत उठाइएगा कि हां यार हमको पता है वो वाली अभी चल रही है ये वाली चल रही है, जो है वो सच्चाई आपके सामने है। आप इन कतर रेल की इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं एंड कोशिश करिए कि जब भी कहीं फंस जाए कुछ ना समझ में आए तो कॉल सेंटर नंबर 105 पर लेटेस्ट सर्विस अपडेट के लिए फोन कर लें 105। मस्त मौलोगा ने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। आप अगर परेशान होने में खुश रहते हैं तो जाइए परेशान होइए, लेकिन हमारी बात को सुने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: फिरे,
1: छल्ला की लब्दा फिरे ये तो नहीं पता, पर जिंदगी में सब कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर सक्सेसफुल होंगे यही तो बस हमें नहीं पता, वरना हम सब इस दुनिया में अलग तरह से पहचाने जाते। लेकिन एक चीज जिसमें सूरज चाचू एकदम सक्सेसफुल है वो है गर्मी बनाए रखने में।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: अब तापमान का क्या है, जब चाहे सूरज चाचू बढ़ा दे रहे हैं। अब देखो आजकल अपनी चमकान ऐसी बढ़ाएं कि 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए, और वही मिनिमम भी अब 32 आ गया। कुल मिलाकर दिन भर गर्मी का आलम रहता है, रात को जब आप सोचते हैं मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो भी दिन भर की गर्मी की फीलिंग रात तक बरकरार रहती है, और सुबह उठते ही सुबह नहीं होती, सीधे दोपहर होती है। ये कहें तो गलत नहीं होगा, थोड़े दिन अभी ऐसा ही चलेगा, इसलिए इसी में एडजस्ट करना सीख लो। पानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, एंड एंटरटेनमेंट के लिए मिर्ची है ना, ये पूरी प्यास बुझाएगा एंटरटेनमेंट की। मिर्ची इज हॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: मम्मा शुका, क्या गाना गाया महमूद राघव एंड रुआ साहब मिलके, शानदार गाना गाया आपने। फिलहाल मस्त मौला गौरव आपके साथ और घड़ी का टाइम अगले घंटे की तरफ 5:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: भाई जो हमारे कदर में नियम कानून के खिलाफ जाता है उस पर कार्रवाई तो होनी है, और कुछ ऐसा ही हुआ है जब एक इंस्पेक्शन कैंपेन चला गया कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा। यस, और एक बड़ा एक्शन लिया है जहां पर 17 ट्रेवल एंड एयर कार्गो एजेंसीज को बंद कर दिया गया है। मेन रीजन भाई, सबसे पहले तो इसका मकसद था एयर सेक्टर में जो ओवरसाइट को स्ट्रॉन्ग करना है, और कुछ लोग जो एजेंसी चला रहे हैं वो क्या अप्रूव लॉस के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं? अगर वो नहीं चला रहे हैं तो फिर वो चला कैसे रहे? और बस फिर क्या था भाई, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये 17 ट्रेवल एंड एयर कार्गो एजेंसीज जिनको इंस्पेक्शन के बाद ये पाया गया कि नियम कानून खिलाफ है, इनको बंद कर दिया गया। और ये बंद इसलिए हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, जो एक सेट पैटर्न था वो बताया गया था वो नहीं किया, और इससे ट्रेवल एंड एयर कार्गो ऑफिसर्स में जब छापे पड़े होंगे आई एम श्योर बहुत सारी खामियां भी मिली होंगी। इसीलिए कहते हैं नियम कानून से चलोगे तो फायदे में रहोगे, अगर इसके खिलाफ जाओगे तो फिर टाटा बाबा करके घर जाओगे। कुल मिलाकर बस इतना ही कहना है, लगातार यहाँ की हुकूमत हमारे लिए चीजों को बेहतर से बेहतरीन बनाती है, और एजेंसीज अथॉरिटीज अपना काम करती है, उनके लिए दिल से शुक्रिया। और ये हमारे आपके लिए फायदे के लिए होता है, ताकि कोई भी गलत लोग गलत नियम कानून से काम करके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम या मुसीबत ना खड़ी करे, उससे पहले ही उन पर कार्रवाई जाती है। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल संजू राठौड़ आवाज की कार्रवाई करने बैंगल्स गाने के साथ मिर्ची पर इट्स हॉट।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गमा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
3: Catch Officer Brown.
6: Officer Brown.
3: Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: झा रांझण रांझण मेरे क्या गाना तूने गाया।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है देवी और सजनों। एक और वीकेंड जल्दी जल्दी से आ जाता है। अभी एक हफ्ते पहले ही तो हमने तैयारियां की थी और सैटरडे को ग्रैंड फिनाले हुआ था मिर्ची मम्मी का, और अब एक बार फिर से कल फ्राइडे आ जाएगा। वैसे इन सबके बीच इस वीकेंड आप क्या करें? अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो 23 जून से 4 जुलाई के बीच दोहा समर ट्रेड एंड शॉपिंग एग्जीबिशन इज ऑल सेट, एंड इसके लिए आपको DECC जाना है। एंड ये सैटरडे टू थर्सडे 10 AM to 10 PM चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। फ्राइडे को 3 PM to 10 PM का टाइम। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव ये भी कहेगा कि टीबल हज्म 13th एडिशन यानी कि फ्रेग्रेंस का परफ्यूम का वो मेला एक बार फिर से आज से शुरू हो जाएगा अल हज्म मॉल में। एंड इसके अलावा भी आपके पास मौका है, अगर आप फिट रहना चाहती हैं, लेडीज दिस इज फॉर यू, SFA लेडीज ट्रैक चैलेंज 2026 एस्पायर इंडोर ट्रैक में 6th, 13th, 20th and 26th यानी कि अब 26 जून वाली चीज बची रह गई आपके लिए। इसमें एंट्री फीस है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। और इस वीकेंड अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो आम खाने का एक आखिरी मौका, एंट्री फ्री है 27th ऑफ जून तक चलने वाले इस सूख वागिफ के मेले में। भारत के मैंगो की नाना प्रकार की वैरायटी और नाना प्रकार की चीजें मिलेंगी, और ये बातें आपको कहां पता लगती है?
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: यस, मेरे शो शाम शानदार में, और एक बार फिर से बता दूं, इंडियन मैंगो एग्जीबिशन हम्बा एग्जीबिशन 27th ऑफ जून को लास्ट होगा, यानी कि ये सैटरडे ये आखिरी टाइम है जब आप इस साल भारत के आमों को चख पा रहे हैं। तो जरूर जाइए और मैंगो से बने नाना प्रकार के व्यंजन, बोले तो बहुत सारे डिफरेंट कलनरी कुजीन आपको मिल जाएंगे। जाइए, एंजॉय कीजिए, मैंगो के स्वाद का मजा लीजिए और अपने समर को और अच्छा कीजिए। और कुछ लोग तो वेकेशन पे भी निकल रहे होंगे, उनको भी हैप्पी सेफ ट्रेवल्स, लौट के आना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की बात है, होमवर्क भी तो कराना है। मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

आता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
3: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
8: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
9: Dosti kai kusul hai madam. No sorry, no thank you.
10: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
11: Tum mirchi suno na, jahan entertainment khub milega.
12: Khub milega.
13: Qatar ka number one radio station.
14: 89.6 FM, Mirchi 1.
15: It's hot.

0: मलंग सजना और ये मलंग गाना सुनाया किसने आपको यहाँ? मस्त मौला गौरव। वैसे शाम के 5:35 से भी ज्यादा हो रहे हैं और आपके साथ चल रहा है मेरा शो
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center।
0: और जब मस्त मौला गौरव आपके साथ हो तो ये वो टाइम होता है जब हम पैसों की ताकत आपके कानों में पहुँचाते हैं। और ये पैसों की ताकत रियाल के खिलाफ होती है, जैसे कि एक रियाल के बदले भारतीय मुद्रा में 25.90 रुपए मिलने वाले हैं आपको, कल से लगभग 5 पैसे कम, 25.90। अगर हम बात करें तो ये है इंडियन रुपीज 25.90 रुपए। इसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अगेंस्ट इंडियन रुपीज श्रीलंका के आपको मिलने वाले हैं पूरे 92.48 श्रीलंकन रुपीज, यानी कि 92.48। वहीं इसके बाद अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.81 76.81 पाकिस्तानी रुपीस ये है इस वक्त आपको मिलेंगे जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाली रुपीस तपाईको हजुर 1 कतरी रियाल बदले 41.28 का भल्चर रेट है दाजी, हाँ जी 41.28 का रेट छा बहनी। अगर आप घर भेजना है तो बेस्ट टाइम छो पैसा भेज दो। अगर हम बात करें तो इसके बाद बांग्लादेशी टका दादा 1 कतरी रियाल के बदले 33.89 तो 33.89 बांग्लादेशी टका का रेट ऐसा रेट अच्छे तो अगेंस्ट कतरी रियाल। मस्त मौला गौरव के साथ मिर्ची पर ऐसे ही सुनते रहो गानों का। हाँ, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100/100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: एकदम सही कह रहा है, भले बाजार अकेले न जाओ, अरे भाई इतना बड़ा आम का बाजार लगा है, सारे दोस्तों को ले जाओ। मस्त मौला गौरव। गाना था भरे बाजार, जिसमें बादशाह साहब ने रैप कर दिया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब हमारे कतर में भरे बाजार सूख वाकिफ में आपको हम्बा एग्जीबिशन मिल रहा है, थर्ड मैंगो फेस्टिवल इंडियन एम्बेसी लेकर आई है, तो मुझे लगता है हमारा आपका फर्ज बनता है कि यहाँ एक बार जाकर आम की अलग अलग वेरायटियों को तो चखना ही है, घर लेके आना है और वहां से बढ़िया बढ़िया डिशेज बनाकर मस्त मौला गौरव को भी खिलानी है। इस सीजन मेरे होठों को, या यूं कह लें मेरी जबान को, अभी तक अमरस का स्वाद नहीं मिला। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खा नहीं सकता हूं, पर मुझे आपके हाथों का बना अमरस खाना है। एक बार तो बुला कर देखो हम अमरस कितने अच्छे से खाते हैं, बस आप बनाओ अच्छे से दिल से और बुला लो, इसी उम्मीद में कि इस वीकेंड यानी कि कल परसों आज आप जरूर जा रहे हैं सूख वाकिफ। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा एक बार फिर से सैटरडे की शाम में, जहां लेकर आऊंगा हफ्ते का बेस्ट, लेकिन तब तक के लिए यही टिके रहो, अभी लिपस्टिक लगवाएंगे, उसके बाद पार्टी ऑन करवाएंगे क्लब मिर्ची के साथ, मिर्ची छोट टड़वा अभी भी मस्त। सलामा
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर

वीकेंड ऑफिशियली ऑन हो चुका है. दिमाग को एयरप्लेन मोड पे डालो, स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे, और जो पेंडिंग स्ट्रेस है उसको कल पे डाल दो यार. ये है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. जहाँ फ्रेंड सर्कल हो या स्पेशल सर्कल, टुनाइट नोबडी इज सिटिंग. डांस फ्लोर पे बस एक रूल है, ऑकवर्ड मत हो, बस मूव करो. और अगर स्टेप नहीं आता, कॉन्फिडेंस से करो यार, लोग बोलेंगे ट्रेंड चल रहा है. डांस बसंत

का टारगेट सिंपल है, एंट्री नॉर्मल और एग्जिट लेजेंडरी। आप शरारा पहने हो पर निकलो मोरनी बनके। डीजे में चट मिर्ची और योंतिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

0: Energy will be right back after these messages.
1: Energy.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vid bala murga.
3: हेलो
4: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल
4: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा
4: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन,
9: इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो
11: ऑन अ राइड।

0: पीपल क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंते का एक साथ और आज रात शाइन करने का लाइसेंस सबको मिला हुआ है इफ यू लिसनिंग टू क्लब मिर्ची सो वी आर ऑल बॉर्न टू शाइन
1: वो तम चाटे रखना जिन्हें भंगड़ा पाना पंजाबी आ गया कुछ ला।

0: Mochi will be right back after these messages.
1: Mochi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
6: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ लव इज डेथ।
5: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी है।
5: Catch Officer Brown.
8: Officer Brown.
5: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.
9: अर्ज किया है।
10: इरशाद इरशाद।

करो कि मंडे को नीज कंप्लेन करें। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनतिका विथ यू ऑन क्लब मिर्ची। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर। ए आर रहमान एंड

0: Merchant will be right back after these messages.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Merchant. It's hot.
3: Aamir Khan PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
5: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
7: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
8: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन.
12: इट्स हॉट.
13: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Hi there. What's up? Tell me.
1: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
2: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना, तो शिमला या मनाली चले जाओ.
3: रॉक
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.
5: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
6: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल

ऑल्सो नो पार्टी हार्ड करो लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव मत करना. कैब बुलाओ, दोस्त को बुलाओ, हेडलाइंस मत बनाओ यार. आज की रात सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल के साथ.

या कंफ्यूज्ड, बीट सबको इक्वली ट्रीट करती है। गाने का नाम है एक जैसा हाल। चलो लेट्स गो।

情。

अब हो जाता है कैसे प्यार ये किसको पता। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका आपके साथ, डांस फ्लोर पे केमिस्ट्री फ्री मिल जाएगी आपको।

0: Energy will be right back after these messages.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
6: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
5: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
5: कैच ऑफिसर ब्राउन,
8: ऑफिसर ब्राउन
5: टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
9: अर्ज किया है
10: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Energy will be right back after these messages.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। इफ ड्रामा हैड अ साउंड ट्रैक, दिस इज इट। से तौबा बट स्टिल रिपीट। क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
2: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
1: Relative se advice lo to kehte hain.
3: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
7: On a ride.

0: डांस नाउ रिग्रेट इट।
1: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: एनर्जी लो, अभी टाइम है सनी सनी करने का खुद को. यू हैव टू राइज अप टू द ओकेशन. डजंट फील इम्पॉसिबल व्हेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ऑन क्लब मिर्ची.
1: My dream is to fly over the rainbow so high. My dream.

0: Archie will be right back after these messages.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊंचाई है जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊंचाई है तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: my God, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पगला।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM
10: मिर्ची स्टोरीज।
11: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
12: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
13: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
8: मिर्ची इट्स हॉट।
14: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
7: 89.6
9: FM
7: मिर्ची
9: वन,
7: इट्स हॉट।
15: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Richie will be right back after these messages.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोर्डल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड,
0: क्लब मिर्ची।

0: आखिर है बाहे मुझको पहचान लो
1: वीकेंड पे कॉन्फिडेंस का लेवल ही लीगल हो जाता है। वेलकम बैक पार्टी पीपल, मैं हूँ डॉन डी

मैं जिंदगी की मासी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ, ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ, दुश्मन जो तेरा हो कहता नहीं दुनिया में बहुत ही खतरनाक।

Weg in das Zertabia.

0: strategy. We'll be right back after these messages.
1: Hello.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने
0: की? तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना

0: Technology will be right back after these messages.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
13: ऑन अ राइड।
14: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard.

0: Club Magic will be right back after these messages.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

वीकेंड ऑफिशियली ऑन हो चुका है। दिमाग को एयरप्लेन मोड पे डालो, स्पीकर्स को फुल वॉल्यूम पे, और जो पेंडिंग स्ट्रेस है उसको कल पे डाल दो यार। ये है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। जहाँ फ्रेंड सर्कल हो या स्पेशल सर्कल, टुनाइट नोबडी इज सिटिंग। डांस फ्लोर पे बस एक रूल है, ऑकवर्ड मत हो, बस मूव करो। और अगर स्टेप नहीं आता, कॉन्फिडेंस से करो यार, लोग बोलेंगे ट्रेंड चल रहा है। डांस बसंती।

एंट्री नॉर्मल और एग्जिट लेजेंडरी। आप शरारा पहने हो पर निकलो मोरनी बनके। डीजे मिर्ची और मिर्ची ऑयल टिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

0: Energy will be right back after these messages.
1: Energy.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स से मेरी मेहनत की। तुमने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस से मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एक
3: चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: 89.6
1: It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

0: पीपल क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटे का एक साथ, और आज रात शाइन करने का लाइसेंस सबको मिला हुआ है इफ यू आर लिसनिंग टू क्लब मिर्ची, सो वी आर ऑल बोर्न टू शाइन।
1: तो तम चाके रखना जिन्हें भंगड़ा पाना पंजाबी आ गया कुचेला।

0: Technology will be right back after these messages.
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: Technology will be right back after these messages.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे film के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन.
0: With Oyon Deka and T.

नहीं नहीं पीने के बाद सिर्फ डांस करो, बातें नहीं. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड पीपल हु स्टिल वांट टू गिव लेक्चर्स आफ्टर ड्रिंक्स. ये है असली इमोशनल अत्याचार.

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

बॉस सुनो, पार्टी हार्ड करो लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव मत करना। कैब बुलाओ, दोस्त को बुलाओ, हेडलाइंस मत बनाओ यार। आज की रात सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन द कार।

0: Richie will be right back after these messages.
1: Mirchi.
2: Is cabana, pus cabana, sa cabana. Murga, murga. La vid va la murga. Mirchi, murga.
3: हेलो
4: मिल गया
5: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगता
5: नहीं
3: है?
5: मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा यार रिक्शा
5: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

हो या कंफ्यूज्ड, बीट सबको इक्वली ट्रीट करती है। गाने का नाम है एक जैसा हाल। चलो लेट्स गो।

हो जाता है कैसे प्यार ये किसको पता। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका आपके साथ, डांस फ्लोर पे केमिस्ट्री फ्री मिल जाएगी आपको।

0: Energy will be right back after these messages.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: friendship will be right back after these messages.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो
7: ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर, मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
2: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

अभी टाइम है सनी सनी करने का खुद को. यू हैव टू राइज अप टू द ओकेशन. डजंट फील इम्पॉसिबल विद डीजे मिर्ची और योम टेका ऑन क्लब मिर्ची.

0: Merchant will be right back after these messages.
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड
0: With Oyon Deka and DJ Richard. Only on

0: Technology will be right back after these messages.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,
5: Ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. Only on

0: Energy will be right back after these messages.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
6: with Oil Hundika and DJ Richard. Only on-

वीकेंड पे कॉन्फिडेंस का लेवल ही लीगल हो जाता है। वेलकम बैक पार्टी पीपल, मैं हूँ डॉन डीजे रिचर्ड।

मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ। ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ। दुश्मन जो तेरा हो कहता नहीं, दुनिया में बहुत ही खतरनाक।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देखते क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
3: मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
6: we're gonna go
5: on a ride.

0: Mochi will be right back after these messages.
1: Mochi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक साबुन की शीशी टूटने से 9 साल की लड़की घर से भाग गई और उसके बाद 22 साल बाद घर आई है।
4: यार इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं मिलता है जितना इस सोप की बॉटल में मिल गया। और अगर ये नहीं भागती ना तो इसके मम्मी पापा इसका कर देते बॉडी वॉश।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
11: क्लब मिर्ची।

0: Membership will be wiped out after these messages.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाउ। कॉल नाउ 707076878।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: मिर्ची फ्रेश माल
1: फुल ऑन मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।